0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 6:30।

0: हुजूर वाकफ़ मंजिल थे, मुस्कुरा के चले। उन्हीं की ज़िस्त हुई आबरू के साथ बसर, जो उनकी चादर नस्बत में सर छुपा के चले। नज़र ब आलम पाकिजगी बड़े उन पर, मुसाफर मुसाफरान लहद इसलिए नहा के चले। जनाब आमना उठी बलाएं लेने को, जो ताज सर पे शफात का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर तुझको मुबारक हो ये सबाते कदम, नसीर तुझको मुबारक हो ये सबाते कदम, के इस ज़मीन में अकाबर भी लड़खड़ा के चले। समीन करम क्या ईमान अफरोज़ कलाम है। इस नात का हर शेर में अदब पे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत रसूल और शफात की उम्मीद की तरफ बुलाता है। ख़ास तौर पर यह शेर हर ज़ायर मदीना के लिए एक दर्स है। नहीं है किबर की रुख्सत हरम में ज़ायर को, अदब का है ये तकाजा के सर झुका के चले। और ये शेर उन्हीं की ज़िस्त हुई आबरू के साथ बसर, जो उनकी चादर नस्बत में सर छुपा के चले। आखिर में शायर की दुआ, नसीर तुझको मुबारक हो ये सबात कदम, कई ज़मीं में इकाबर बिखर लड़खड़ा के चले। या अल्लाह हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमा। हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत, हमारी ज़ुबानों पर दरूद व सलाम, और हमारे किरदार में उनकी सुनतें जिंदा फरमा। समीन करम, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। सुनते रहिए इंस्पायर एफ एम 105.1।
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum, this is Nabil Abdul Rashid and you're listening to Inspire FM. Inspire yourself to listen to Inspire FM on 105.1. Peace.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
6: Hadith 4. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.

उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सामीन करम, आप सुन रहे थे बज़्म-ए-नात अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफ एम 105.1 के स्टूडियो से। बज़्म-ए-नात हर जुमातुल मुबारक दिन 11 से 12 बजे के दरमियान आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इसमें शामिल होती है हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल और सुफियाना कलाम। आप भी हमारी इस बज़्म का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे स्टूडियो में आकर मेहमान बनिए और अपनी आवाज़ में हमद, नातिया, सुफियाना कलाम दूसरों की समातों की नज़र कीजिए। सामीन कराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बाँटने की तौफीक नसीब फरमाएँ, आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ बाँटने की तौफीक नसीब फरमाएँ। इंशाल्लाह अगले जुमतुल मुबारक इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। अपने मेज़बान में रोज़गुल के को आज की इस बज़म से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
1: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
0: इंस्पायर एफएम ऑन 105.1 एफएम।
2: You are listening to the Drive Time Show on Inspire FM, serving Luton and the surrounding areas.
3: The UK's finest, Inspire FM presents the Drive Time Show with Khalil Mohammed.
4: Join Khalil Mohammed on the Drive Time Show, where everyone is a winner.
5: Yes, wonderful reminders. Nasheed's stories, they all remind us of Allah subhanahu wa ta'ala and of course his noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hope you guys are ready for more. Take a deep dive, hold your breath, let's go.
6: Hi, Asalaamu Alaikum, it's Scarlett. Be happy and keep listening to 105.1 FM.

कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर FM 105.1।